0: अलग अलगै कारणले गर्छ नि कृष्णले कृष्णीय रूपमा व्यात्ने जस्तै कि कृष्णाष्टमी भई कृष्ण पूजा दिन कृष्णीय भाषा म चाहिँ त्यो मस्त गठेको चिची दिदी मस्त कृष्ण त जुइ नि वैय स्टाइल म त छ जुइ का उलेला अठे जुइ अले मेउ
1: अले
0: शिवरात्रि वैबले उपतन जुइ हारति वैबले शिवरात्रि हाटे मा वैले हाटे मा पिला भीमजा मगला भीमजा बिल विजयी विजयासन अल वे मापी घटे स्वयं बिजोली मस्त मिस्ते मस्त क घना मस्त पासाय आइम पच त अलको ठे घटे घटे जुका आइम पासा शिव यो वेबले न आ शिव यो पायला छिसेल शिवपटे मुख नप नप शिव विजय बिल मेवे स्टाइल पासे मेव का छुराव छुराव छि पाया मुख यो का आठौने मला नप त लाग यो को अले नप लाइले गे जी ज्योनो छ विद टाइ मखला माइ त अले न व ले लिप त उल्टे न टे आइ ठठडा आ ठंग ने ए मरा गा
2: आ कृष्ण भगवान छन विजय ले एकदम मे जित नि पुछना नि आराम दियात नि खेताल मता मत जित ठपार क त मत छे जियात नि का आरते मा विजय के ले ओ त नि एकदम म क्वान होई अथे आपसे आप खाना वेगा वो न नापते ने अपवा जन यथा न बीजक ले जी तो अपछा जी वो अपछा जी कटबिंद गई हला कटबिंद होता सुकुमार ने यथा न भगवान बना बीजा मते कटबिंद यही मको गुलशान यही सुने गुलशान में या सुने गुली ज्ञान सुने हला ऐ जानी थे भगवान जी तो यथा तो शांत रूप सना बीजा छु आपद विपद दोसर प्रभु न जित स्व बिजाऊ सीता न रछे या मास बिजाऊ नका भगवान ने म छिछे खला दुका आ सुना न खनि मको जित के खनेगा थे खलन चसा मास न प खलन चौदै तर जित भगवान झने खन छुने अले खलना छुने ले आ तर पिन्ता ए ल्याव उइ ज्यावलो पागल नि दै ह ए ज्या जित अथे पिने गन न अथे भगवान जीव पुकार स्वीकारियन बिजौ द शान्ति नागु क्षमै नागु रेखा फना फुफ आ अथे पिन्चनी अथे ला परे आछु अथे मजु शान्त जो
3: การเป็นผู้สื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ทำให้ดิวมะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในระหว่างการทำพิธีดิวมะจะไม่สามารถรับประทานอาหารดื่มน้ำหรือกระทั่งลุกออกจากที่นั่งเพื่อทำธุระส่วนตัวได้จึงไม่น่าแปลกใจที่มานีมายาจะชอบทำอาหารและงานเล็กๆน้อยๆในสวนเพื่อขยับแข้งขาหากเธอว่างเว้นจากการเป็นดิวมะ
4: After finishing all those and all then only she cooks food and eat
5: Did she cook by herself or you cook for her?
4: Yeah, we also cook for her, but most of the time she cook herself. Before preparing food, we have to clean everything, like all our cooking materials, or we have to clean it.
5: Why you have to clean everything?
4: Because she is goddess, so we have to, after we eat, no, we have to clean all. Yeah, she is vegetarian, so we don't mix food and everything, like spoons,